0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पोप लियो 14वें की फ्रांस की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिरके, सिस्टर अनुग्रह मिंज एवं फादर संजय दिलीप एक्का।

0: कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु पोप लियो 14वें इस समय फ्रांस की प्रेरित यात्रा पर हैं। 25 सितंबर से पेरिस में शुरू हुई प्रेरित यात्रा में पोप ने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन से मुलाकात करते हुए की। उसके बाद वे यूनेस्को गए, नोटरडम महागिरजाघर में संध्या प्रार्थना की अध्यक्षता की और देश के सबसे बड़े स्टेडियम में लगभग 80,000 युवाओं के साथ जागरण प्रार्थना का संचालन किया।
1: Neus in auditorio meo me
0: 25 सितंबर की शाम रोशनी से भरे मशहूर पेरिस के महागिरजाघर में पोप लियो 14वें ने संध्या वंदना का नेतृत्व किया और विश्वासियों से कहा कि हमें फ्रांसीसी महागिरजाघर नोटरडम की तरह दोबारा जन्म लेना होगा। जब पोप लियो 14वें पेरिस के महागिरजाघर में संध्या वंदना का नेतृत्व करने पहुंचे तो नोटरडम महागिरजाघर रोशनी से भर गया। ऐसा लगा मानो कि 15 अप्रैल 2019 को आग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त विले लुमियर के पूजा स्थल और मशहूर प्रतीक मरम्मत किए गए और पुनर्स्थापित महागिरजाघर के लिए यह एक उपयुक्त उत्सव था। उस दिन आग की लपटों में घिरा महागिरजाघर और जब आग ने महागिर

0: मसीह कलीसिया के सभी विश्वासी पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ बड़ी भक्ति से प्रार्थना में लीन रहे। संध्या वंदना के पहले पोप लियो ने कांटों के ताज के एक पौत्र अवशेष को श्रद्धांजलि दी, जिससे यीशु ख्रिस्त के दुखभोग के दौरान उनके सिर पर रखा गया था या उनके पुनरुत्थान से पहले उनके दुख और बलिदान का प्रतीक है। पोप लियो ने अपने प्रवचन में कहा, हम इस जगह पर शाम की प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसने सदियों से पेरिस के लोगों को किसी और जगह से बढ़कर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाने के लिए बुलाया है। उन्होंने आगे कहा, आग लगने के समय हमने भी बेचैनी से देखा, इस बात का एहसास किया कि इंसान अनहोनी के सामने कितने बेबस होते हैं। उस दुखद पल में हमें एहसास हुआ कि नोटरडम एक स्मारक से कहीं बढ़कर है और यहाँ हम एक सभ्यता के जीते जागते केंद्र में खड़े हैं, जहाँ अतीत और भविष्य मिलते हैं, जहाँ स्वर्ग और धरती एक साथ जुड़ते हैं। पोप ने अपना प्रवचन फ्रांस की कलीसिया को यह कहकर समाप्त किया कि वे ऐसी कलीसिया के जीते जागते पत्थर बने जो भविष्य की उम्मीद करता हो और उससे नहीं डरता हो। उन्होंने कहा, इस महागिरजाघर का पुनर्जन्म हुआ है ताकि आप भी इसके साथ पौत्रता और रोज के मिशन की ओर एक नई तेजी के साथ फिर से जन्म ले सकें। उन्होंने वहां उपस्थित विश्वासों को संबोधित कर कहा, ईश्वर का प्यार सभी तक पहुंचाएं, एक ऐसा प्यार जिसमें जीवन और दिल बदलने और गहरे से गहरे जख्मों को भरने की ताकत हो, राख के अंधेरे से रोशनी लाने की ताकत। आइए हम अपनी नजरें कुंवारी मरियम और बालक येसु की 14वीं सदी की प्रतिमा की ओर उठाएं, जिससे आग ने छुआ तक नहीं था और अब यह एक बार फिर हमारे सामने चमक रही है। फ्रांस में पोप लियो 14वें का पहला दिन एक जागरण प्रार्थना सभा के साथ समाप्त हुआ, जिसमें करीब 80,000 युवा शामिल हुए। पोप ने उनके सवालों के जवाब दिए और उन्हें बिना किसी डर के मसीह का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया।
1: फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा का दूसरा दिन संत पापा लियो 14वें ने सामाजिक सहायता और एकीकरण के मेसन बखीता केंद्र के दौरे से शुरुआत की। केंद्र के मुख्य द्वार पर संत पापा लियो का स्वागत पेरिस के मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्ष लोरेट उल्रिख, केंद्र की निदेशिका और मीटिंग के सह नियोजक ने किया। केंद्र के अंदर संत पापा ने एक यादगार पट्टिका का अनावरण किया। केंद्र की निदेशिका के स्वागत भाषण के बाद केंद्र के 3 लोगों ने गवाही दी। इसके बाद संत पापा ने उनसे मिलने की खुशी जाहिर करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं पेरिस में आपके साथ इस दूसरे दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। यह घर पूरे घर के लिए इस बात का गवाह है कि एक दूसरे से मिलना और सम्मान व शांति के साथ मिलजुल कर रहना संभव है। संत पापा ने कहा कि संत बकीता से जुड़ा यह सामाजिक सहायता और एकीकरण का केंद्र हमें प्यार की सभ्यता बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह सभ्यता उस संस्कृति का विकल्प है जो समुदायों को तोड़ती है और शहरों को अकेलेपन की बीमारी में धकेल देती है। संत बकीता हमें उन लोगों को देखने के लिए बुलाती हैं जो दरकिनार कर दिए गए हैं, उन्हें आज की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की गुलामी से आजाद करने के लिए कहती हैं और हर उस भाई बहन की अपार गरिमा का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती हैं जिनमें खुद येसु हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। संत पापा ने कहा, ख्रिस्तियों के लिए गरीब लोग सिर्फ समाज की कोई श्रेणी नहीं है, बल्कि वे खुद मसीह का शरीर है। ईश्वर के मानव रूप में आने की शिक्षा को बस आम तौर पर मान लेना काफी नहीं है। इस महान रहस्य को सच में समझने के लिए हमें यह साफ तौर से जानना होगा कि प्रभु ने ऐसा शरीर धारण किया जो भूख और प्यास महसूस करता है और जो कमजोरी और कैद का अनुभव करता है। गरीब और क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह इन स्त्री पुरुषों के जरिए हमसे मिलने और प्रेम पाने का मौका देते रहते हैं। ये लोग हमें खुद से ऊपर उठकर दान पुण्य करने का साहस दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे संत पापा ने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता को प्रेरित करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उपहारों के आदान प्रदान से जुड़ी है जो हर मुलाकात में नए सिरे से होता है। कोई भी इतना गरीब नहीं है कि उसके पास देने के लिए कुछ ना हो और कोई भी इतना अमीर नहीं है कि उसे कुछ पाने की जरूरत ना हो। हर व्यक्ति की सीमाएं दूसरों की रहस्यमयी उपस्थिति के लिए एक द्वार

0: बन जाती हैं जिनमें जीवन के ईश्वर करीब आते हैं और वहां जीवन भरपूर होता है। संत पापा ने कहा कि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आंख हाथ से यह नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और ना ही सिर पैर से यह कह सकता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, बल्कि शरीर के जो अंग कमजोर लगते हैं वे भी बहुत जरूरी हैं। जब संत पौलुस ने प्राचीन रोमन दुनिया के इस अमीर और सांस्कृतिक रूप से विविध शहरों में से एक में रहने वाले क्रिश्चियों से बात की तो उन्होंने बताया कि ईश्वर ने सब कुछ इस तरह व्यवस्थित किया है कि कम महत्वपूर्ण सदस्य को अधिक सम्मान मिले ताकि शरीर के भीतर कोई फूट न पड़े, बल्कि सदस्य एक दूसरे का समान रूप से ध्यान रखें। अंत में संत पापा लियो 14वें ने मेसन बखीता और उन सभी ख्रिस्तियों को धन्यवाद दिया जो पूरे फ्रांस में इसी तरह की सेवा कार्य में संलग्न है। उन्होंने कहा, एक दूसरे की देखभाल करने की उस भावना को बनाए रखें जो भाईचारे के साथ स्वागत, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बातचीत के जरिए लोगों की भावना को ऊंचा उठाती है और दुनिया को और अधिक मानवीय बनाती है। मेसन वकीता केंद्र का दौरा करने के बाद संत पापा लियो कार से इंस्टीट्यूट कैथोलिक दी पेरिस के लिए रवाना हुए।
1: संत पापा लियो 14वें ने फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे दिन फ्रांस के कलिसियाई सभा के पुरोहितों, समर्पित जीवन के लोगों, दीक्षार्थियों और नए बपतिस्मा प्राप्त लोगों से भेंट की। संत पापा लियो ने कहा कि वास्तव में हम अपने भाई बहनों तक पहुंचने के लिए बुलाए गए हैं। यह पवित्र आत्मा है जो आपकी कलिसियाई समुदाय को प्रेरित करते हैं, और विस्तृत रूप में कहा जाए तो फ्रांस के कलिसिया के जीवन को। ईश्वर के आश्चर्यजनक कार्यों को देखते हुए हमें क्या करने की जरूरत है और पवित्र आत्मा हमें किस ओर अग्रसर करते हैं, जहां हम दीक्षार्थियों का साथ दे सकें, वे जो नए बपतिस्मा प्राप्त हैं, जो नई शुरुआत करते हैं। संत पापा ने कुछ सालों पहले एक फ्रांसीसी अभिव्यक्ति की याद कराते हुए और उसे अपने में सम्माहित करने का आह्वान करते हुए कहा कि कलिसिया दीक्षा की एक अवस्था है, वह जो दीक्षार्थियों को मदद करती है, नए बपतिस्मा ग्रहण किए और विश्वास में लौटने वालों का, वह उन्हें समय प्रदान करती, उन्हें ठोस तथा निरंतर दिशा निर्देशित करती है। वास्तव में ख्रिस्तीय दीक्षा द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही अपने में पूर्ण रूपेण एक प्रेरितिक प्रयास का केंद्र रहा है। उस समय भी कई प्रस्ताव आए थे और उन सालों में हुए ईश शास्त्रीय और पूजन विधि से जुड़े विकास ने द्वितीय वैटिकन धर्म सभा के दीक्षांत के कार्यक्रमों को नया रूप देने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि आज परिस्थितियां अलग हैं, फिर भी आप दीक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने की इस गहरी प्रेरिताई संबंधी परंपरा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो तरीका पहले से चल रहा था उसे 1996 में और मजबूत किया गया। संत पापा लियो ने कहा कि दीक्षांत की प्रक्रिया में होने का अर्थ उन लोगों का स्वागत करने से है जो ईश्वर की खोज करते हैं। उनमें दोनों एक अवसर और एक प्रेरिताई की खोज करना है। अवसर हमारे लिए उन बातों में निहित है कि विश्वासियों के रूप में हम अपने विश्वास की यात्रा को नवीन बनाते और सुसमाचार की खुशी को नए रूप में अनुभव करते हैं। वहीं प्रेरिताई हमारे लिए उन्हें पोषित करने और उनके दिशा निर्देशन में निहित है। यद्यपि उन्होंने संस्कारों को ग्रहण कर लिया है, हमें आनंद में उनका स्वागत करने की जरूरत है जो हमारे पास आते हैं। उनके आध्यात्मिक अनुभव का विकास करने, उनके व्यक्तिगत इतिहास का सम्मान और ईश्वर के संदेश को घोषित करने हेतु बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इनमें से कई लोग बाद में वही सवाल पूछेंगे जो हमने मैरियल के साक्ष्य में सुना, बपतिस्मा के बाद खालीपन की अनुभूति से कैसे बचा जा सकता है। संत पापा लियो ने कहा कि अतः हमें चाहिए कि हम उन लोगों को पूरी तरह अपने समुदाय में और बपतिस्मा के उपरांत प्रार्थनामय मिलन में शामिल करते हुए उनके लिए स्वागत और प्रशिक्षण का एक अवसर दें, जो उन्हें ख्रिस्तीय जीवन और विश्वास के विभिन्न पहलुओं को पूर्ण रूपेण आलिंगन करने में मदद करता हो। नए बपतिस्मा प्राप्त लोगों के रूप में उन्हें चाहिए कि वे ख्रिस्तीय विश्वास की नींव को गहराई से समझते हों, धर्म ग्रंथ और ईश शास्त्रीय बातों का उचित प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए विश्वास के घोषणा के अनुरूप धर्म सिद्धांतों की समृद्धि और ख्रिस्तीय नैतिक कार्यों के विभिन्न पहलुओं को और अधिक पूरी तरह से समझते हों। हमें चाहिए कि हम उन्हें कलिसियाई धर्म विधि के जीवन से परिचय कराएं। जैसे कि हमने साक्ष्य में सुना, संत पापा ने कहा कि कुछ एक के लिए धर्म विधि का अनुष्ठान विश्वास के रहस्य में प्रवेश करने का आधार बनता है। यह कलिसियाई जीवन का एक मूलभूत तथ्य है जो हमसे प्रेरितिक सेवा की मांग करती है, जो वैटिकन द्वितीय धर्म सभा की शिक्षाओं में आधारित है। वास्तव में धर्म विधि के बारे में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह धर्म शिक्षा के बाद आती है, जो कोई उन बातों को लागू करता है जिसे उसने सीखा है। इसके विपरीत यह मसीह के पास का रहस्य को अभिव्यक्त करती है, जो हमारे लिए सुसमाचार और ईश्वर के जीवन को व्यक्त करता है। इसके सुर ताल में, भाषा और अनुष्ठान में धर्म विधि परिवर्तन की यात्रा बनती और संस्कारों के लिए हमें तैयार करती है।
2: Pour mener à bien cette mission, le rôle des formateurs est essentiel. Comme nous l'enseigne l'antique tradition de l'Église, il s'agit de préparer des parrains et des marraines des communautés.
1: प्रेरिताई के संबंध में प्रशिक्षण देने वाले का एक अति महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राचीन कलिसिया में हम इसे धर्म माता पिता के रूप में प्रस्तुत पाते हैं, जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें चाहिए कि वे अपनी ओर से एक विशेष तैयारी करें, जिससे वे नए दीक्षार्थियों और बपतिस्मा प्राप्त लोगों की अच्छी अगुवाई कर सकें। इस संदर्भ में संत पापा लियो ने ख्रिस्तीय वयस्क दीक्षांत रीति की ओर ध्यान आकर्षित कराया। इसके साथ ही प्रेरितिक कार्य में संलग्न लोगों को चाहिए कि वे सिर्फ धर्म ग्रंथ, ईश शास्त्र, धर्म विधि और आध्यात्मिक जीवन तक ही प्रशिक्षण प्राप्त न करें, लेकिन मानवीय गुणों में भी, जिससे वे जीवन की कठिन परिस्थितियों में उन लोगों की मदद कर सकें। संत पापा ने कहा कि जैसे हमने सुना, कुछ लोग साधारण आध्यात्मिक प्यास के साथ आते हैं, जीवन के अर्थ की खोज में, सुसमाचार के आकर्षण में, वहीं दूसरे हैं जो दर्द भरे अनुभवों, अकेलेपन और बड़ी कठिनाइयों से दबे आते हैं। ऐसी स्थिति में निकटता, करुणा और कोमलता हमारे लिए अर्थपूर्ण होते हैं। हमें चाहिए कि हम एक संतुलन की स्थिति में उन्हें सुने, उनका स्वागत करें। इसके साथ ही हमें चाहिए कि हम उन्हें विश्वास की चुनौतियों का सामना करने में प्रोत्साहन दें। इस यात्रा में हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की गति का धीरे से और सावधानी पूर्वक भ्रातृत्व में, सहचर्य में सम्मान करें। यह हमें एक साथ चलने की शैली को अपनाने का आह्वान करती है। अपने ख्रिस्तीय विश्वास के मार्ग में हम एक दूसरे को समृद्ध बनाते हैं। हम पुरोहितों और लोक धर्मियों, दादा दादियों और दीक्षार्थियों, प्रेरिताई के अगुओं और नए बपतिस्मा प्राप्त लोगों के रूप में मिलकर विकास करते हैं। संत पापा लियो ने संत अगुस्टिन की याद दिलाते हुए कहा कि वे संत अम्ब्रोस के द्वारा विश्वास से परिचित हुए। उनका विश्वास एक छोटे बीज की भांति था जब उन्होंने बपतिस्मा लिया। यद्यपि वह बीज बढ़ा और विकसित होकर एक बड़ा वृक्ष बना, जिसकी शाखाओं में हम आज भी अपने लिए पनाह को पाते हैं। आप सभी नए बपतिस्मा प्राप्तों को देखते हुए, मैं आप सबों को सिर्फ पवित्र आत्मा के फलों के रूप में नहीं देखता हूँ, बल्कि आप फ्रांस के कलिसिया के लिए पूर्णतः की प्रतिज्ञा स्वरूप हैं। इसके बदले में आप इस समाज के लिए सुसमाचार के प्रेरित बने। इस महान भूमि का साक्ष्य आपकी यात्रा को पोषित करे। एक दूसरे का स्वागत करते हुए हम सब मिलकर फ्रांस में कलीसिया के जीवंत समुदाय का निर्माण करें जो आस्था को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। अपने संबोधन के अंत में संत पापा ने फ्रांस के मुख्य संरक्षिका कुमारी मरियम की ममता में सुरक्षा और शहर के रक्षक संत जेनेवीव और संत डेनिस की मध्यस्थता का आह्वान करते हुए संत पापा ने सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
2: Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
3: Amen. Amen.

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पोप लियो 14वें की फ्रांस की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्के, सिस्टर अनुग्रह मिंज एवं फादर संजय दिलीप एक्का।

0: कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु पोप लियो 14वें इस समय फ्रांस की प्रेरित यात्रा पर हैं। 25 सितंबर से पेरिस में शुरू हुई प्रेरित यात्रा में पोप ने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात करते हुए की। उसके बाद वे यूनेस्को गए, नोटरडेम महागिरजाघर में संध्या प्रार्थना की अध्यक्षता की और देश के सबसे बड़े स्टेडियम में लगभग 80,000 युवाओं के साथ जागरण प्रार्थना का संचालन किया।
1: Deus in auditorio meo me
0: 25 सितंबर की शाम रोशनी से भरे मशहूर पेरिस के महागिरजाघर में पोप लियो 14वें ने संध्या वंदना का नेतृत्व किया और विश्वासियों से कहा कि हमें फ्रांसीसी महागिरजाघर नोटरडेम की तरह दोबारा जन्म लेना होगा। जब पोप लियो 14वें पेरिस के महागिरजाघर में संध्या वंदना का नेतृत्व करने पहुंचे तो नोटरडेम महागिरजाघर रोशनी से भर गया। ऐसा लगा मानो कि 15 अप्रैल 2019 को आग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त विलेलोमियर के पूजा स्थल और मशहूर प्रतीक मरामत किए गए और पुनर्स्थापित महागिरजाघर के लिए यह एक उपयुक्त उत्सव था। उस दिन आग की लपटों में घिरा महागिरजाघर और जब आग ने महागिरजाघर को जला दिया तो सड़कों पर प्रार्थना करते लोगों की दर्दनाक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया और खबरों के जरिए दुनिया भर में फैल गए थे। आज फ्रांस की कलीसिया फिर से एक साथ आई है, इस बार खुशी मनाने के लिए, क्योंकि पोप ने महागिरजाघर का दौरा किया और संध्या वंदना की अगुवाई की। जब सूरज की रोशनी रंगीन कांच की खिड़कियों पर पड़ी तो वह चमकने लगी, दीवारों पर रंगीन पैटर्न धीरे धीरे घूमने लगे। इस बीच एक ऑर्गन बजा और गायक दल ने गाना शुरू किया, जबकि धर्माध्यक्ष पुरोहित धर्मसंगी सेमिनरी छात्र और फ्रांसीसी कलीसिया के सभी विश्वासी पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ बड़ी भक्ति से प्रार्थना में लीन रहे। संध्या वंदना के पहले पोप लियो ने कांटो के ताज के एक पौत्र अवशेष को श्रद्धांजलि दी जिससे यीशु ख्रिस्त के दुख भोग के दौरान उनके सिर पर रखा गया था या उनके पुनरुत्थान से पहले उनके दुख और बलिदान का प्रतीक है। पोप लियो ने अपने प्रवचन में कहा, हम इस जगह पर शाम की प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने सदियों से पेरिस के लोगों को किसी और जगह से बढ़कर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाने के लिए बुलाया है। उन्होंने आगे कहा, आग लगने के समय हमने भी बेचैनी से देखा, इस बात का एहसास किया कि इंसान अनहोनी के सामने कितने बेबस होते हैं। उस दुखद पल में हमें एहसास हुआ कि नोटरडेम एक स्मारक से कहीं बढ़कर है और यहाँ हम एक सभ्यता के जीते जागते केंद्र में खड़े हैं, जहाँ अतीत और भविष्य मिलते हैं, जहाँ स्वर्ग और धरती एक साथ जुड़ते हैं। पोप ने अपना प्रवचन फ्रांस की कलीसिया को यह कहकर समाप्त किया कि वे ऐसी कलीसिया के जीते जागते पत्थर बने जो भविष्य की उम्मीद करता हो और उससे नहीं डरता हो। उन्होंने कहा, इस महागिरजाघर का पुनर्जन्म हुआ है ताकि आप भी इसके साथ पौत्रता और रोज के मिशन की ओर एक नई तेजी के साथ फिर से जन्म ले सकें। उन्होंने वहां उपस्थित विश्वासियों को संबोधित कर कहा, ईश्वर का प्यार सभी तक पहुंचाएं, एक ऐसा प्यार जिसमें जीवन और दिल बदलने और गहरे से गहरे जख्मों को भरने की ताकत हो, राख के अंधेरे से रोशनी लाने की ताकत। आइए हम अपनी नजरें कुंवारी मरियम और बालक येसु की 14वीं सदी की प्रतिमा की ओर उठाएं, जिससे आग ने छुआ तक नहीं था और अब यह एक बार फिर हमारे सामने चमक रही है।
1: Dans la nuit, la lumière apparaît encore plus éclatante.
0: फ्रांस में पोप लियो 14वें का पहला दिन एक जागरण प्रार्थना सभा के साथ समाप्त हुआ जिसमें करीब 80,000 युवा शामिल हुए। पोप ने उनके सवालों के जवाब दिए और उन्हें बिना किसी डर के मसीह का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया।
2: फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा का दूसरा दिन संत पापा लियो 14वें ने सामाजिक सहायता और एकीकरण के मेसन बखीता केंद्र के दौरे से शुरुआत की। केंद्र के मुख्य द्वार पर संत पापा लियो का स्वागत पेरिस के मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्ष लोरेट उल्रिक, केंद्र की निदेशिका और मीटिंग के सह नियोजक ने किया। केंद्र के अंदर संत पापा ने एक यादगार पट्टिका का अनावरण किया। केंद्र की निदेशिका के स्वागत भाषण के बाद केंद्र के 3 लोगों ने गवाही दी। इसके बाद संत पापा ने उनसे मिलने की खुशी जाहिर करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं पेरिस में आपके साथ इस दूसरे दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। यह घर पूरे घर के लिए इस बात का गवाह है कि एक दूसरे से मिलना और सम्मान व शांति के साथ मिलजुल कर रहना संभव है। संत पापा ने कहा कि संत बकीता से जुड़ा यह सामाजिक सहायता और एकीकरण का केंद्र हमें प्यार की सभ्यता बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह सभ्यता उस संस्कृति का विकल्प है जो समुदायों को तोड़ती है और शहरों को अकेलेपन की बीमारी में धकेल देती है। संत बकीता हमें उन लोगों को देखने के लिए बुलाती हैं जो दरकिनार कर दिए गए हैं, उन्हें आज की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की गुलामी से आजाद करने के लिए कहती हैं और हर उस भाई बहन की अपार गरिमा का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती हैं जिनमें खुद येसु हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। संत पापा ने कहा, ख्रिस्तियों के लिए गरीब लोग सिर्फ समाज की कोई श्रेणी नहीं है बल्कि वे खुद मसीह का शरीर हैं। ईश्वर के मानव रूप में आने की शिक्षा को बस आम तौर पर मान लेना काफी नहीं है। इस महान रहस्य को सच में समझने के लिए हमें यह साफ तौर से जानना होगा कि प्रभु ने ऐसा शरीर धारण किया जो भूख और प्यास महसूस करता है और जो कमजोरी और कैद का अनुभव करता है। गरीब और क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह इन स्त्री पुरुषों के जरिए हमसे मिलने और प्रेम पाने का मौका देते रहते हैं। ये लोग हमें खुद से ऊपर उठकर दान पुण्य करने का साहस दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे संत पापा ने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता को प्रेरित करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उपहारों के आदान प्रदान से जुड़ी है जो हर मुलाकात में नए सिरे से होता है। कोई भी इतना गरीब नहीं है कि उसके पास देने के लिए कुछ ना हो और कोई भी इतना अमीर नहीं है कि उसे कुछ पाने की जरूरत ना हो। हर व्यक्ति की सीमाएं दूसरों की रहस्यमयी उपस्थिति के लिए एक द्वार बन जाती हैं जिनमें जीवन के ईश्वर करीब आते हैं और वहां जीवन भरपूर होता है। संत पापा ने कहा कि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आंख हाथ से यह नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और ना ही सिर पैर से यह कह सकता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, बल्कि शरीर के जो अंग कमजोर लगते हैं वे भी बहुत जरूरी हैं। जब संत पौलुस ने प्राचीन रोमन दुनिया के इस अमीर और सांस्कृतिक रूप से विविध शहरों में से एक में रहने वाले ख्रिस्तियों से बात की तो उन्होंने बताया कि ईश्वर ने सब कुछ इस तरह व्यवस्थित किया है कि कम महत्वपूर्ण सदस्य को अधिक सम्मान मिले ताकि शरीर के भीतर कोई फूट न पड़े बल्कि सदस्य एक दूसरे का समान रूप से ध्यान रखें। अंत में संत पापा लियो 14वें ने मेसन बखीता और उन सभी ख्रिस्तियों को धन्यवाद दिया जो पूरे फ्रांस में इसी तरह की सेवा कार्य में संलग्न है। उन्होंने कहा, एक दूसरे की देखभाल करने की उस भावना को बनाए रखें जो भाईचारे के साथ स्वागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बातचीत के जरिए लोगों की भावना को ऊंचा उठाती है और दुनिया को और अधिक मानवीय बनाती है। मेसन बकीता केंद्र का दौरा करने के बाद संत पापा लियो कार से इंस्टीट्यूट कैथलिक दी पेरिस के लिए रवाना हुए।
3: संत पापा लियो 14वें ने फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे दिन फ्रांस के कलिसियाई सभा के पुरोहितों, समर्पित जीवन के लोगों, दीक्षार्थियों और नए बपतिस्मा प्राप्त लोगों से भेंट की। संत पापा लियो ने कहा कि वास्तव में हम अपने भाई बहनों तक पहुंचने के लिए बुलाए गए हैं। यह पवित्र आत्मा है जो आपकी कलिसियाई समुदाय को प्रेरित करते हैं और विस्तृत रूप में कहा जाए तो फ्रांस के कलिस्य के जीवन को ईश्वर के आश्चर्यजनक कार्यों को देखते हुए हमें क्या करने की जरूरत है और पवित्र आत्मा हमें किस ओर अग्रसर करते हैं, जहां हम दीक्षार्थियों का साथ दे सकें, वे जो नए बपतिस्मा प्राप्त हैं, जो नई शुरुआत करते हैं। संत पापा ने कुछ सालों पहले एक फ्रांसीसी अभिव्यक्ति की याद कराते हुए और उसे अपने में सम्माहित करने का आह्वान करते हुए कहा कि कलिसिया दीक्षा की एक अवस्था है, वह जो दीक्षार्थियों को मदद करती है, नए बपतिस्मा ग्रहण किए और विश्वास में लौटने वालों का, वह उन्हें समय प्रदान करती, उन्हें ठोस तथा निरंतर दिशा निर्देशित करती है। वास्तव में ख्रिस्तीय दीक्षा द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही अपने में पूर्ण रूपेण एक प्रेरितिक प्रयास का केंद्र रहा है। उस समय भी कई प्रस्ताव आए थे और उन सालों में हुए ईश शास्त्रीय और पूजन विधि से जुड़े विकास ने द्वितीय वैटिकन धर्म सभा के दीक्षांत के कार्यक्रमों को नया रूप देने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि आज परिस्थितियां अलग हैं, फिर भी आप दीक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने की इस गहरी प्रेरिताई संबंधी परंपरा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो तरीका पहले से चल रहा था उसे 1996 में और मजबूत किया गया। संत पापा लियो ने कहा कि दीक्षांत की प्रक्रिया में होने का अर्थ उन लोगों का स्वागत करने से है जो ईश्वर की खोज करते हैं। उनमें दोनों एक अवसर और एक प्रेरिताई की खोज करना है। अवसर हमारे लिए उन बातों में निहित है कि विश्वासियों के रूप में हम अपने विश्वास की यात्रा को नवीन बनाते और सुसमाचार की खुशी को नए रूप में अनुभव करते हैं। वहीं प्रेरिताई हमारे लिए उन्हें पोषित करने और उनके दिशा निर्देशन में निहित है। यद्यपि उन्होंने संस्कारों को ग्रहण कर लिया है, हमें आनंद में उनका स्वागत करने की जरूरत है जो हमारे पास आते हैं। उनके आध्यात्मिक अनुभव का विकास करने, उनके व्यक्तिगत इतिहास का सम्मान और ईश्वर के संदेश को घोषित करने हेतु बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इनमें से कई लोग बाद में वही सवाल पूछेंगे जो हमने मैरियल के साक्ष्य में सुना, बपतिस्मा के बाद खालीपन की अनुभूति से कैसे बचा जा सकता है। संत पापा लियो ने कहा कि अतः हमें चाहिए कि हम उन लोगों को पूरी तरह अपने समुदाय में और बपतिस्मा के उपरांत प्रार्थनामय मिलन में शामिल करते हुए उनके लिए स्वागत और प्रशिक्षण का एक अवसर दें जो उन्हें ख्रिस्तीय जीवन और विश्वास के विभिन्न पहलुओं को पूर्ण रूपेण आलिंगन करने में मदद करता हो। नए बपतिस्मा प्राप्त लोगों के रूप में उन्हें चाहिए कि वे ख्रिस्तीय विश्वास की नींव को गहराई से समझते हों, धर्म ग्रंथ और ईश शास्त्रीय बातों का उचित प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए विश्वास के घोषणा के अनुरूप धर्म सिद्धांतों की समृद्धि और ख्रिस्तीय नैतिक कार्यों के विभिन्न पहलुओं को और अधिक पूरी तरह से समझते हों। हमें चाहिए कि हम उन्हें कलिसियाई धर्म विधि के जीवन से परिचय कराएं। जैसे कि हमने साक्ष्य में सुना, संत पापा ने कहा कि कुछ एक के लिए धर्म विधि का अनुष्ठान विश्वास के रहस्य में प्रवेश करने का आधार बनता है। यह कलिसियाई जीवन का एक मूलभूत तथ्य है जो हमसे प्रेरितिक सेवा की मांग करती है, जो वैटिकन द्वितीय धर्म सभा की शिक्षाओं में आधारित है। वास्तव में धर्म विधि के बारे में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह धर्म शिक्षा के बाद आती है, जो कोई उन बातों को लागू करता है जिसे उसने सीखा है। इसके विपरीत यह मसीह के पास का रहस्य को अभिव्यक्त करती है जो हमारे लिए सुसमाचार और ईश्वर के जीवन को व्यक्त करता है। इसके सुर ताल में, भाषा और अनुष्ठान में धर्म विधि परिवर्तन की यात्रा बनती और संस्कारों के लिए हमें तैयार करती है।
1: Pour mener à bien cette mission, le rôle des formateurs est essentiel. Comme nous l'enseigne l'antique tradition de l'Église, il s'agit de préparer des parrains et des marraines des communautés.
3: प्रेरिताई के संबंध में प्रशिक्षण देने वाले का एक अति महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राचीन कलिसिया में हम इसे धर्म माता पिता के रूप में प्रस्तुत पाते हैं जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें चाहिए कि वे अपनी ओर से एक विशेष तैयारी करें जिससे वे नए दीक्षार्थियों और बपतिस्मा प्राप्त लोगों की अच्छी अगुवाई कर सकें। इस संदर्भ में संत पापालियो ने ख्रिस्तीय वयस्क दीक्षांत रीति की ओर ध्यान आकर्षित कराया। इसके साथ ही प्रेरितिक कार्य में संलग्न लोगों को चाहिए कि वे सिर्फ धर्म ग्रंथ, ईश शास्त्र, धर्म विधि और आध्यात्मिक जीवन तक ही प्रशिक्षण प्राप्त न करें, लेकिन मानवीय गुणों में भी, जिससे वे जीवन की कठिन परिस्थितियों में उन लोगों की मदद कर सकें। संत पापा ने कहा कि जैसे हमने सुना कुछ लोग साधारण

0: इस यात्रा में हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की गति का धीरे से और सावधानी पूर्वक भ्रातृत्व में सहचर्य में सम्मान करें। यह हमें एक साथ चलने की शैली को अपनाने का आह्वान करती है। अपने ख्रिस्तीय विश्वास के मार्ग में हम एक दूसरे को समृद्ध बनाते हैं। हम पुरोहितों और लोक धर्मियों, दादा दादियों और दीक्षार्थियों, प्रेरिताई के अगुओं और नए बपतिस्मा प्राप्त लोगों के रूप में मिलकर विकास करते हैं। संत पापा लियो ने संत अगुस्टिन की याद दिलाते हुए कहा कि वे संत अम्ब्रोस के द्वारा विश्वास से परिचित हुए। उनका विश्वास एक छोटे बीज की भांति था जब उन्होंने बपतिस्मा लिया। यद्यपि वह बीज बढ़ा और विकसित होकर एक बड़ा वृक्ष बना, जिसकी शाखाओं में हम आज भी अपने लिए पनाह को पाते हैं। आप सभी नए बपतिस्मा प्राप्तों को देखते हुए मैं आप सबों को सिर्फ पवित्र आत्मा के फलों के रूप में नहीं देखता हूं, बल्कि आप फ्रांस के कलीसिया के लिए पूर्णतः की प्रतिज्ञा स्वरूप हैं। इसके बदले में आप इस समाज के लिए सुसमाचार के प्रेरित बने। इस महान भूमि का साक्ष्य आपकी यात्रा को पोषित करे। एक दूसरे का स्वागत करते हुए हम सब मिलकर फ्रांस में कलीसिया के जीवंत समुदाय का निर्माण करें, जो आस्था को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। अपने संबोधन के अंत में संत पापा ने फ्रांस के मुख्य संरक्षिका कुमारी मरियम की ममता में सुरक्षा और शहर के रक्षक संत जेनेविव और संत डेनिस की मध्यस्थता का आह्वान करते हुए संत पापा ने सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
1: Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
2: Amen. Amen.

0: उसका चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
0: प्रेरितों का धर्म सार।
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: श्रीराम और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।

0: आनंद के दूसरा वेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव
0: के लिए। पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण विषय हैं संत पापा लियो 14वें का फ्रांस की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त विवरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: संत पापा फ्रांसिस ने फ्रांस की अपनी प्रेरित यात्रा के दूसरे दिन पेरिस के प्लासे दे कॉनकॉर्डिया में मिस्सा बलिदान अर्पित किया। अपनी प्यास बुझाने के लिए हम मसीह की ओर आते हैं, जो जीवन जल के स्रोत हैं। वह जल जो हमारी प्यास बुझाती और जीवन को समृद्ध बनाती है। ईश्वर के प्रेम का वह जल जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उडेला गया है। संत पापा ने कहा,
1: La liturgie de la parole de ce jour nous invite à sonder notre cœur.
0: शब्द समारोह की धर्म विधि हमें अपने हृदय के अंदर देखने का निमंत्रण देती है और हमें कहती है, हमारी सबसे गहरी प्यास क्या है? वास्तव में मैं अपने जीवन में क्या खोज रहा हूँ? हम सभी खुशी, प्रेम और परिपूर्णता की कामना करते हैं। हम किस स्रोत से उसकी प्यास बुझाना चाहते हैं? क्या हम भौतिक चीजों से संतुष्ट हैं?

0: संत पापा 25 सितंबर से शुरू हुई प्रेरितिक यात्रा के दूसरे पड़ाव लूर्द में है। कल शाम संत पापा ने लूर्द की माता मरियम के तीर्थ स्थल के ग्रोटो में फ्रांस के लोगों और कलीसिया को कुंवारी मरियम को समर्पित किया। देवियों और सज्जनों, संत पापा लूर्द में है। जैसे ही माइक्रोफोन से उद्घोषक ने ये शब्द कहे, भीड़ खुशी से झूम उठी और संत पापा लियो का नाम लेकर पुकारने लगी। हालांकि यह उत्साह गंभीर शांति में बदल गया जब संत पापा लियो 14वें कुछ मिनटों के लिए घुटनों के बल दर्शन स्थल की गुफा में प्रार्थना की। वे धीरे धीरे गुफा के चारों ओर घूमे, दीवारों को छुआ और एक मोमबत्ती जलाई। तब संत पापा ने प्यार से भरी मां के सामने फ्रांस को और कलीसिया को समर्पित किया। उन्होंने लोगों के बीच भाईचारे, सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों, दुख झेल रहे लोगों और शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद संत पापा ने गुफा की मेज पर एक सुनहरा गुलाब रखा। यह एक ऐसा उपहार है जिसे संत पापा पारंपरिक रूप से माता मरियम के प्रति अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में रखते हैं। अंत में संत पापा ने हे पिता हमारे प्रार्थना की अगुवाई की और अपना आशीर्वाद दिया। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, उत्साह और तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल फिर से भर गया। अपनी प्रेरितिक यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत संत पापा लियो 14वें ने फ्रांस के धर्माध्यक्षों के साथ मुलाकात से की। संत पापा लियो कार से करीब 9 बजे लूर्द के महाधर्माध्यक्ष के निवास पहुंचे। मुख्य द्वार पर फ्रेंच धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल जीन मार्क एवलिन ने संत पापा का स्वागत किया और उन्हें सभागार ले आए। फ्रेंच धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष के स्वागत भाषण के बाद संत पापा ने धर्माध्यक्षों को संबोधित किया। संत पापा ने कहा, मेरे प्यारे धर्माध्यक्ष भाइयों, आपसे इस पवित्र स्थान पर मिलकर मुझे खुशी हो रही है। यह जगह उस गुफा से थोड़ी दूर है जहां कुमारी मरियम ने संत बेरनादेत को दर्शन दिए थे और यहां आप अपनी आम सभा के लिए नियमित रूप से इकट्ठा होते हैं। इस जगह को चुनकर आप स्पष्ट रूप से फ्रांस की कलीसिया को ईश्वर की मां निष्कलंक कुमारी की सुरक्षा में सौंपने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, ताकि वे प्रभु की इच्छा के अनुसार कलीसिया का सही मार्गदर्शन कर सके। सच तो यह है कि यीशु तक पहुँचने का मरियम के माध्यम से बेहतर और कोई तरीका नहीं है। उनसे जुड़ी हर चीज हमें उनके पुत्र की ओर ले जाती है। इस तरह आप उस विरासत को आगे बढ़ाते हैं जो आपको विश्वास के मामले में अपने पूर्वजों से मिली है, एक ऐसी विरासत जो आपके देश में सुसमाचार के प्रचार की शुरुआत से ही चली आ रही है। सच तो यह है कि यहाँ ईश्वर की माँ के प्रति भक्ति इतनी गहरी हो गई है कि फ्रांस को मरियम का गणराज्य कहा जाने लगा। आपके देश और धन्य कुंवारी मरियम के बीच का यह खास रिश्ता तब एक अनोखे ढंग से जाहिर हुआ जब 10 फरवरी 1638 को फ्रांस को औपचारिक रूप से उन्हें समर्पित किया गया। संत पापा ने कहा कि इसकी एक सुंदर झलक उन्होंने पेरिस के नोटर डैम महागिरजाघर में देखा। संत पापा पियूस 11वें ने स्वर्ग में आरोहित माता मरियम को फ्रांस की संरक्षिका घोषित किया था। संत पापा ने कहा कि फ्रांस में कलीसिया का इतिहास बहुत समृद्ध है। अपने समुदायों और देश का भविष्य बनाने के लिए इसके सुंदर और फलदायी इतिहास से प्रेरणा लेना जरूरी है। कलीसिया ने देश के धीरे धीरे बनने की प्रक्रिया को देखा है और उसमें योगदान भी दिया है। आज भी यह फ्रांस की संस्कृति, पहचान और दुनिया में इसकी भूमिका का अहम हिस्सा है। इसी वजह से सार्वजनिक जीवन में कलीसिया की आवाज को सुने जाने का पूरा अधिकार है। भले ही उनकी बात हमेशा समझ में न आए, फिर भी उनकी आवाज की जरूरत है। इसलिए संत पापा ने उन्हें उन सभी नेक लोगों के साथ मिलकर डटे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जो इन्हीं मूल्यों को मानते हैं। पेरिस में नोटर डैम महागिरजाघर के फिर से खुलने के मौके पर संत पापा फ्रांसिस ने एक पत्र लिखकर कहा कि बपतिस्मा लेने वालों को अपने विश्वास की विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना अब चरवाहे के रूप में आपके मिशन का हिस्सा है, क्योंकि आप फ्रांस की कलीसिया का नवीनीकरण चाहते हैं। संत पापा ने कहा, हम आज तक चली आ रही पवित्रता की अटूट परंपरा के बारे में सोचते हैं, विश्वास की प्रेरणा और पवित्र आत्मा के काम से कला, साहित्य और विज्ञान का जो विकास हुआ है, इंसान की कभी न छीनी जा सकने वाली अहमियत, उसकी गरिमा और मानव अधिकारों व आजादी की रक्षा की जरूरत के बारे में जो गहरी समझ बनी है, और सबसे बढ़कर मिशनरी काम की अद्भुत गति जिसने दुनिया के कोने कोने में अच्छे नतीजे दिए हैं। संत पापा ने कहा, यीशु से मिलने वाला शांति का संदेश तब और भी जरूरी हो जाता है जब हम फ्रांस और पश्चिम के अन्य देशों में चिंताजनक ध्रुवीकरण, भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक जीवन की गुणवत्ता में गिरावट तथा हिंसा, असमानता और गरीबी का फिर से बढ़ना देखते हैं। अपने संदेश को विराम देते हुए संत पापा ने कहा, फ्रांस की कलीसिया मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे यकीन है कि फ्रांस की कलीसिया पूरे जोश के साथ यीशु मसीह का संदेश फैलाने और दूसरों को उनसे प्यार करने के लिए प्रेरित करने का अपना मिशन जारी रखेगा। अंत में संत पापा ने उनकी सभा धर्म प्रांत के समुदायों और देश को लूर्द की माता मरियम की ममतामयी सुरक्षा में सौंपते हुए खुशी खुशी अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: संत पापालियो 14वें ने फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के तीसरे दिन 27 सितंबर 2026 को लूर्द के मरियम तीर्थ में पवित्र यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा, आज आप इस धन्य भूमि में खड़ा होते हैं जिसने बहुत सारी कृपाओं को पाया है। यह तीर्थ विश्वास की लौ को आपके घरों और पल्लियों में प्रज्वलित करे। आप लूर्द की सांत्वना को अपने पड़ोसियों, प्रियजनों और पूरे फ्रांस के लोगों के लिए लेकर जाएं। संत पापा ने रविवार धर्म विधि हेतु निर्धारित पाठों के आधार पर चिंतन करते हुए कहा, हम कुमारी मरियम के द्वारा संत बेरनदित को दिए गए केंद्रीय संदेश का आज के पाठों में स्पर्श होता पाते हैं। मन परिवर्तन हेतु बुलावा जो हमारे लिए कोमल और आवश्यक दोनों है। सुसमाचार में यीशु दुख की गहरी सच्चाई से हृदयों को देखते हैं जो अपने में बंद हैं। तुमने पश्चाताप नहीं किया क्यों? यह यीशु के हृदय को घायल करता है, क्योंकि ईश्वर अपने संतानों को खोना नहीं चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम जीवन पाएं, अपनी आंखें खोलें और उनकी ओर लौटें। पश्चाताप करने का अर्थ उस मार्ग का परित्याग करना जिसमें हम खो गए थे और जीवन की ओर लौटना तथा अपने हृदय को उस खुशी के लिए खोलना जो हम में कभी खत्म नहीं होती है। संत पापा लियो ने कहा कि यीशु हमें सीधे तौर पर पश्चाताप करने हेतु निमंत्रण देते हैं। इसके बारे में संत लूकस हमें कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। इसके साथ ही वे हमारे दृष्टिकोण को भौतिक जीवन से परे आध्यात्मिक जीवन की ओर ले चलते हैं, क्योंकि इस जीवन की खुशी हमारे लिए क्षण भंगुर और अस्थायी है, जो कभी कभी बहुतों की पहुंच से परे होती है, जबकि सच्ची खुशी आशा में सबों के लिए प्रतिज्ञा की गई है और हमें अपने प्रयासों और चुनावों में उसी खुशी को खोजने की जरूरत है। क्या कुंवारी मरियम ने संत बेरनदित से यह नहीं कहा, मैं तुम्हें इस दुनिया में खुशी प्रदान करने की प्रतिज्ञा नहीं करती हूँ, लेकिन दूसरी दुनिया में।
2: La vie éternelle est une promesse solide, certain, que le Seigneur nous fait.
1: मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ, वास्तव में अनंत जीवन की प्रतिज्ञा हमारे लिए ईश्वर की ओर से की जाती है। संत पापा ने कहा, उसे उन्होंने पहले ही अपने क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमारे लिए प्राप्त किया है, और बपतिस्मा की कृपा द्वारा वे हर दिन उसे हमारे जीवन की परिपूर्णता में लाते हैं। यह हमारी पहुंच के अंदर है, लेकिन हमें स्वतंत्रता में इसका स्वागत करने की जरूरत है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है, चूंकि प्रेम के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। प्रेम के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग ख्रीस्त को हाँ कहने के लिए करें, माता मरियम की भांति उनकी कृपा में आश्रित होते हुए। संत पापा ने कहा कि हम उसी आवश्यक परिवर्तन के लिए बुलावा को पाते हैं जिसे मरियम ने यहाँ घोषित किया, पश्चाताप, पश्चाताप, पश्चाताप। वे इसे 3 बार दोहराती हैं। वे बेरनदित को इसे कुछ विशेष कार्य में करने को कहती हैं, क्योंकि यह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए भी जरूरी है, एक दुनिया के लिए जो अपने में भटक रही है। अतः मानव के हृदय में परिवर्तन की आवश्यकता है जो स्वयं से शुरू होता है। पश्चाताप प्रेम का कार्य है जो मानव परिवार में एकात्मकता से किया जाता है, संत पापा ने कहा। यह ईश्वर के प्रति प्रेम का कार्य है, क्योंकि हम अपने पापों के कारण उनके हृदय के घावों की चंगाई करने की चाह रखते हैं। यह उन भाई बहनों के लिए प्रेम का कार्य है जो मन फिराव के आह्वान की ओर ध्यान नहीं देते हैं और पापों के कारण मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं। आध्यात्मिक विकास हेतु हमें अपने गलतियों को पहचानने की आवश्यकता है, संत पापा लियो ने कहा कि हमारी माता हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमारी प्रार्थना और पश्चाताप हमें बड़ी आशा से भर देते हैं। कुमारी मरियम हमारे विचारों और हृदयों में परिवर्तन लाती हैं, हमें शांति प्रदान करती हैं। बीमारों की माता के प्रेम और प्रार्थना के द्वारा हम विश्वास के साथ भविष्य की ओर यात्रा करें। आप दुनिया के तूफानों से भयभीत ना हों, क्योंकि ईश्वर की पवित्र माता आपकी यात्रा की देखरेख करती हैं। वह कलिसिया को अपनी कोमल छांव तले रखती हैं, जैसे कि चमकता हुआ भोर का तारा पद चिन्हों के लिए मार्गदर्शक बनता है, जिससे खुशी में वे अपने पुत्र यीशु के संग आपको नया जीवन प्रदान कर सकें।

पोप लियो 14वें ने फ्रांस की पैरितिक यात्रा के तीसरे दिन लूथ के अक्वेल नोत्रदम केंद्र के स्टाफ एवं मरीजों से मुलाकात की। अक्वेल नोत्रदम एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। ग्रोटो के सामने नदी के तट पर स्थित और लगभग 50 कर्मचारियों तथा सैकड़ों स्वयंसेवकों द्वारा संचालित यह केंद्र इस पवित्र स्थान की यात्रा पर आने वाले बीमार और बुजुर्ग लोगों को रहने की जगह एवं सहायता प्रदान करता है। स्वागत भाषण और दो कर्मचारियों के साक्ष्य सुनने के बाद संत पापा ने उपस्थित लोगों को संबोधित कर कहा, लूथ में आपके साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है। जहां 150 से भी अधिक सालों से दुनिया के कोने कोने से तीर्थयात्री माता मरियम के माध्यम से यीशु को अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तकलीफें चढ़ाने आते हैं। सचमुच यहाँ दुर्बलता छिपी नहीं है, बल्कि एक पौत्र मुलाकात की जगह बन जाती है। इस साल तीर्थ यात्रा की प्रेरितिक विषय वस्तु है, प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। संत पापा ने कहा, यह प्रभु के दूत और मरियम की नजरों के बीच के अनोखे आदान प्रदान को दिखाता है। इस मुलाकात में एक युवा महिला की विनम्रता और उदारता ने ईश्वर को अपने मुक्ति कार्य को पूरा करने दिया। मरियम ने प्रभु को अपने लिए नहीं रखा, बल्कि उन्हें दुनिया को दिया और हम में से हर एक से कहा, प्रभु तुम्हारे साथ है। संत पापा ने कहा, यह सच्चाई मानव के रूप में हमारी गरिमा की नींव है और यहाँ मरियम हम में से हर एक को एक खास व्यक्ति के रूप में देखती है। जैसा कि संत बेनादित ने गुफा में दिव्य दर्शन के दौरान गवाही दी थी, यह ममतामय नज़र हमें फिर से याद दिलाती है कि ईश्वर की नज़र में कोई भी अदृश्य नहीं है। पोप ने इसके विपरीत भावना पर खेद प्रकट करते हुए कहा, ऐसे समय में जब समाज के कुछ हिस्से मानव जीवन की गरिमा को नज़रअंदाज करने या आंखें मूंदने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सबसे पहले अपने अंदर और दूसरों में एक सोचने समझने वाला नज़रिया बढ़ाना होगा। यह उन लोगों का नज़रिया है जो जीवन के उसके गहरे अर्थ में देखते हैं, जो उसके मुक्त होने, उसकी खूबसूरती और स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारी के उसके बुलावे को समझते हैं। यह उन लोगों का नज़रिया है जो असलियत पर कब्जा करने का दावा नहीं करते, बल्कि उसे एक उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं। हर चीज़ में सृष्टिकर्ता का प्रतिबिंब देखते और हर इंसान में उसकी जीती जागती तस्वीर देखते हैं। यह नज़रिया हर इंसान के चेहरे पर मिलने, बातचीत एवं एकता के बुलावे को देखने के लिए खुला है, ताकि दुनिया में जीवन हो सके। देवदूत संदेश के दौरान जब प्रभु ने उन पर दृष्टि डाली, तब मरियम ने महसूस किया कि वे प्रभु द्वारा चुन ली गई हैं। इस मुलाकात में हम में से हर एक जन यह जानता है कि हमें भी ईश्वर के प्यार के लिए बुलाया गया है और ईश्वर के प्रेम के लिए गहराई से निर्दिष्ट किया गया है, जो जीवन के स्रोत हैं। मानव सिर्फ इसलिए योग्य है क्योंकि वह अनंत जीवन के लिए बना और निर्दिष्ट है। हमारी गरिमा को मापी या उस पर बहस नहीं की जा सकती। तब संत पापा ने रोगी भाई बहनों को संबोधित कर कहा, मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोगों के लिए खास बीमारियों और कभी कभी बहुत अधिक दर्द के कारण आपका भविष्य अंधकारमय, अनिश्चित एवं बिना उम्मीद के लग सकता है, लेकिन कोई भी मानवीय कानून आपको अपनी गरिमा की निश्चितता कभी खोने नहीं दे सकता। इसके विपरीत मानव की इसी कभी न खोने वाली गरिमा के नाम पर हमें झूठे दया की आड़ में मौत का लालच ठुकराना चाहिए। मौत का कारण बनना कोई साधारण बात नहीं है। पोप ने इच्छा मृत्यु के कानून का विरोध करते हुए कहा, जो कानूनी है जरूरी नहीं है कि वह नैतिक भी हो। इसके बाद संत पापा ने दुनिया भर के स्वास्थ्य कर्मियों से अपील करते हुए कहा, यहाँ लूथ में रोगियों और उम्मीद के शहर में मैं स्वास्थ्य देखभाल के पूरे समुदाय से अपील करता हूँ कि आप अपने काम के गहरे अर्थ को याद रखें, जो कि एक पीड़ित इंसान की देखभाल करना है, ना कि उसे खत्म करना। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जीवन के उत्साही सेवक बने। मैं आप सभी को प्रभु की माता के ममतामय स्नेह को सपोर्ट करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त से हमारे लिए सांत्वना प्राप्त करें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। और इसके बाद आज पोप का अंतिम कार्यक्रम होगा, शाम को लूथ की माता मरियम के ग्रोटो में रोजरी माला विनती। कल उनके कार्यक्रम मेट्स में होंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण विषय हैं संत पापा लियो 14वें का फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: संत पापा फ्रांसिस ने फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे दिन पेरिस के प्लासे दे कॉनकॉर्डिया में मिस्सा बलिदान अर्पित किया। अपनी प्यास बुझाने के लिए हम मसीह की ओर आते हैं, जो जीवन जल के स्रोत हैं। वह जल जो हमारी प्यास बुझाती और जीवन को समृद्ध बनाती है। ईश्वर के प्रेम का वह जल जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उडेला गया है। संत पापा ने कहा,
1: La liturgie de la parole de ce jour nous invite à sonder notre cœur.
0: शब्द समारोह की धर्म विधि हमें अपने हृदय के अंदर देखने का निमंत्रण देती है और हमें कहती है, हमारी सबसे गहरी प्यास क्या है? वास्तव में मैं अपने जीवन में क्या खोज रहा हूँ? हम सभी खुशी, प्रेम और परिपूर्णता की कामना करते हैं। हम किस स्रोत से उसकी प्यास बुझाना चाहते हैं? क्या हम भौतिक चीजों से संतुष्ट हैं?

0: संत पापा 25 सितंबर से शुरू हुई प्रेरितिक यात्रा के दूसरे पड़ाव लूर्द में है। कल शाम संत पापा ने लूर्द की माता मरियम के तीर्थ स्थल के ग्रोटो में फ्रांस के लोगों और कलीसिया को कुंवारी मरियम को समर्पित किया। देवियों और सज्जनों, संत पापा लूर्द में है। जैसे ही माइक्रोफोन से उद्घोषक ने ये शब्द कहे, भीड़ खुशी से झूम उठी और संत पापा लियो का नाम लेकर पुकारने लगी। हालांकि यह उत्साह गंभीर शांति में बदल गया जब संत पापा लियो 14वें कुछ मिनटों के लिए घुटनों के बल दर्शन स्थल की गुफा में प्रार्थना की। वे धीरे धीरे गुफा के चारों ओर घूमे, दीवारों को छुआ और एक मोमबत्ती जलाई। तब संत पापा ने प्यार से भरी मां के सामने फ्रांस को और कलीसिया को समर्पित किया। उन्होंने लोगों के बीच भाईचारे, सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों, दुख झेल रहे लोगों और शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद संत पापा ने गुफा की मेज पर एक सुनहरा गुलाब रखा। यह एक ऐसा उपहार है जिसे संत पापा पारंपरिक रूप से माता मरियम के प्रति अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में रखते हैं। अंत में संत पापा ने हे पिता हमारे प्रार्थना की अगुवाई की और अपना आशीर्वाद दिया। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, उत्साह और तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल फिर से भर गया। अपनी प्रेरितिक यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत संत पापा लियो 14वें ने फ्रांस के धर्माध्यक्षों के साथ मुलाकात से की। संत पापा लियो कार से करीब 9 बजे लूर्द के महाधर्माध्यक्ष के निवास पहुंचे। मुख्य द्वार पर फ्रेंच धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल जीन मार्क एवलिन ने संत पापा का स्वागत किया और उन्हें सभागार ले आए। फ्रेंच धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष के स्वागत भाषण के बाद संत पापा ने धर्माध्यक्षों को संबोधित किया। संत पापा ने कहा, मेरे प्यारे धर्माध्यक्ष भाइयों, आपसे इस पवित्र स्थान पर मिलकर मुझे खुशी हो रही है। यह जगह उस गुफा से थोड़ी दूर है जहां कुंवारी मरियम ने संत बेरनादेत को दर्शन दिए थे और यहां आप अपनी आम सभा के लिए नियमित रूप से इकट्ठा होते हैं। इस जगह को चुनकर आप स्पष्ट रूप से फ्रांस की कलीसिया को ईश्वर की मां निष्कलंक कुंवारी की सुरक्षा में सौंपने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, ताकि वे प्रभु की इच्छा के अनुसार कलीसिया का सही मार्गदर्शन कर सके। सच तो यह है कि यीशु तक पहुँचने का मरियम के माध्यम से बेहतर और कोई तरीका नहीं है। उनसे जुड़ी हर चीज हमें उनके पुत्र की ओर ले जाती है। इस तरह आप उस विरासत को आगे बढ़ाते हैं जो आपको विश्वास के मामले में अपने पूर्वजों से मिली है, एक ऐसी विरासत जो आपके देश में सुसमाचार के प्रचार की शुरुआत से ही चली आ रही है। सच तो यह है कि यहाँ ईश्वर की माँ के प्रति भक्ति इतनी गहरी हो गई है कि फ्रांस को मरियम का गणराज्य कहा जाने लगा। आपके देश और धन्य कुंवारी मरियम के बीच का यह खास रिश्ता तब एक अनोखे ढंग से जाहिर हुआ जब 10 फरवरी 1638 को फ्रांस को औपचारिक रूप से उन्हें समर्पित किया गया। संत पापा ने कहा कि इसकी एक सुंदर झलक उन्होंने पेरिस के नोटर डैम महागिरजाघर में देखा। संत पापा पियूस 11वें ने स्वर्ग में आरोहित माता मरियम को फ्रांस की संरक्षिका घोषित किया था। संत पापा ने कहा कि फ्रांस में कलीसिया का इतिहास बहुत समृद्ध है। अपने समुदायों और देश का भविष्य बनाने के लिए इसके सुंदर और फलदायी इतिहास से प्रेरणा लेना जरूरी है। कलीसिया ने देश के धीरे धीरे बनने की प्रक्रिया को देखा है और उसमें योगदान भी दिया है। आज भी यह फ्रांस की संस्कृति, पहचान और दुनिया में इसकी भूमिका का अहम हिस्सा है। इसी वजह से सार्वजनिक जीवन में कलीसिया की आवाज को सुने जाने का पूरा अधिकार है। भले ही उनकी बात हमेशा समझ में न आए, फिर भी उनकी आवाज की जरूरत है। इसलिए संत पापा ने उन्हें उन सभी नेक लोगों के साथ मिलकर डटे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जो इन्हीं मूल्यों को मानते हैं। पेरिस में नोटर डैम महागिरजाघर के फिर से खुलने के मौके पर संत पापा फ्रांसिस ने एक पत्र लिखकर कहा कि बपतिस्मा लेने वालों को अपने विश्वास की विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना अब चरवाहे के रूप में आपके मिशन का हिस्सा है, क्योंकि आप फ्रांस की कलीसिया का नवीनीकरण चाहते हैं। संत पापा ने कहा, हम आज तक चली आ रही पवित्रता की अटूट परंपरा के बारे में सोचते हैं। विश्वास की प्रेरणा और पवित्र आत्मा के काम से कला, साहित्य और विज्ञान का जो विकास हुआ है, इंसान की कभी न छीनी जा सकने वाली अहमियत, उसकी गरिमा और मानव अधिकारों व आजादी की रक्षा की जरूरत के बारे में जो गहरी समझ बनी है, और सबसे बढ़कर मिशनरी काम की अद्भुत गति जिसने दुनिया के कोने कोने में अच्छे नतीजे दिए हैं। संत पापा ने कहा, यीशु से मिलने वाला शांति का संदेश तब और भी जरूरी हो जाता है जब हम फ्रांस और पश्चिम के अन्य देशों में चिंताजनक ध्रुवीकरण, भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक जीवन की गुणवत्ता में गिरावट तथा हिंसा, असमानता और गरीबी का फिर से बढ़ना देखते हैं। अपने संदेश को विराम देते हुए संत पापा ने कहा, फ्रांस की कलीसिया मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे यकीन है कि फ्रांस की कलीसिया पूरे जोश के साथ यीशु मसीह का संदेश फैलाने और दूसरों को उनसे प्यार करने के लिए प्रेरित करने का अपना मिशन जारी रखेगा। अंत में संत पापा ने उनकी सभा धर्म प्रांत के समुदायों और देश को लूर्द की माता मरियम की ममतामयी सुरक्षा में सौंपते हुए खुशी खुशी अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: संत पापालियो 14वें ने फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के तीसरे दिन 27 सितंबर 2026 को लूर्द के मरियम तीर्थ में पवित्र यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा, आज आप इस धन्य भूमि में खड़ा होते हैं जिसने बहुत सारी कृपाओं को पाया है। यह तीर्थ विश्वास की लौ को आपके घरों और पल्लियों में प्रज्वलित करे। आप लूर्द की सांत्वना को अपने पड़ोसियों, प्रियजनों और पूरे फ्रांस के लोगों के लिए लेकर जाएं। संत पापा ने रविवार धर्म विधि हेतु निर्धारित पाठों के आधार पर चिंतन करते हुए कहा, हम कुमारी मरियम के द्वारा संत बेरनदित को दिए गए केंद्रीय संदेश का आज के पाठों में स्पर्श होता पाते हैं। मन परिवर्तन हेतु बुलावा जो हमारे लिए कोमल और आवश्यक दोनों है। सुसमाचार में यीशु दुख की गहरी सच्चाई से हृदयों को देखते हैं जो अपने में बंद है। तुमने पश्चाताप नहीं किया, क्यों यह यीशु के हृदय को घायल करता है? क्योंकि ईश्वर अपने संतानों को खोना नहीं चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम जीवन पाएं, अपनी आंखें खोलें और उनकी ओर लौटें। पश्चाताप करने का अर्थ उस मार्ग का परित्याग करना जिसमें हम खो गए थे और जीवन की ओर लौटना तथा अपने हृदय को उस खुशी के लिए खोलना जो हम में कभी खत्म नहीं होती है। संत पापा लियो ने कहा कि यीशु हमें सीधे तौर पर पश्चाताप करने हेतु निमंत्रण देते हैं। इसके बारे में संत लूकस हमें कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। इसके साथ ही वे हमारे दृष्टिकोण को भौतिक जीवन से परे आध्यात्मिक जीवन की ओर ले चलते हैं, क्योंकि इस जीवन की खुशी हमारे लिए क्षण भंगुर और अस्थायी है जो कभी कभी बहुतों की पहुंच से परे होती है, जबकि सच्ची खुशी आशा में सबों के लिए प्रतिज्ञा की गई है और हमें अपने प्रयासों और चुनावों में उसी खुशी को खोजने की जरूरत है। क्या कुंवारी मरियम ने संत बेरनदित से यह नहीं कहा, मैं तुम्हें इस दुनिया में खुशी प्रदान करने की प्रतिज्ञा नहीं करती हूँ लेकिन दूसरी दुनिया में?
2: La vie éternelle est une promesse solide, certain.
1: मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ, वास्तव में अनंत जीवन की प्रतिज्ञा हमारे लिए ईश्वर की ओर से की जाती है। संत पापा ने कहा, उसे उन्होंने पहले ही अपने क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमारे लिए प्राप्त किया है और बपतिस्मा की कृपा द्वारा वे हर दिन उसे हमारे जीवन की परिपूर्णता में लाते हैं। यह हमारी पहुंच के अंदर है लेकिन हमें स्वतंत्रता में इसका स्वागत करने की जरूरत है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है क्योंकि प्रेम के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। प्रेम के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग ख्रीस्त को हाँ कहने के लिए करें, माता मरियम की भांति उनकी कृपा में आश्रित होते हुए। संत पापा ने कहा कि हम उसी आवश्यक परिवर्तन के लिए बुलावा को पाते हैं जिसे मरियम ने यहाँ घोषित किया, पश्चाताप पश्चाताप पश्चाताप। वे इसे तीन बार दोहराती हैं। वे बेरनादेत को इसे कुछ विशेष कार्य में करने को कहती हैं, क्योंकि यह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए भी जरूरी है, एक दुनिया के लिए जो अपने में भटक रही है। अतः मानव के हृदय में परिवर्तन की आवश्यकता है जो स्वयं से शुरू होता है। पश्चाताप प्रेम का कार्य है जो मानव परिवार में एकात्मकता से किया जाता है, संत पापा ने कहा। यह ईश्वर के प्रति प्रेम का कार्य है, क्योंकि हम अपने पापों के कारण उनके हृदय के घावों की चंगाई करने की चाह रखते हैं। यह उन भाई बहनों के लिए प्रेम का कार्य है जो मन फिराव के आह्वान की ओर ध्यान नहीं देते हैं और पापों के कारण मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं। आध्यात्मिक विकास हेतु हमें अपने गलतियों को पहचानने की आवश्यकता है, संत पापा लियो ने कहा कि हमारी माता हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमारी प्रार्थना और पश्चाताप हमें बड़ी आशा से भर देते हैं। कुमारी मरियम हमारे विचारों और हृदयों में परिवर्तन लाती हैं, हमें शांति प्रदान करती हैं। बीमारों की माता के प्रेम और प्रार्थना के द्वारा हम विश्वास के साथ भविष्य की ओर यात्रा करें। आप दुनिया के तूफानों से भयभीत ना हों, क्योंकि ईश्वर की पवित्र माता आपकी यात्रा की देखरेख करती हैं। वह कलिसिया को अपनी कोमल छांव तले रखती हैं, जैसे कि चमकता हुआ भोर का तारा पद चिन्हों के लिए मार्गदर्शक बनता है, जिससे खुशी में वे अपने पुत्र यीशु के संग आपको नया जीवन प्रदान कर सकें।

पोप लियो 14वें ने फ्रांस की पैरितिक यात्रा के तीसरे दिन लूद के अक्वेल नोत्रदम केंद्र के स्टाफ एवं मरीजों से मुलाकात की। अक्वेल नोत्रदम एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। ग्रोटो के सामने नदी के तट पर स्थित और लगभग 50 कर्मचारियों तथा सैकड़ों स्वयंसेवकों द्वारा संचालित यह केंद्र इस पवित्र स्थान की यात्रा पर आने वाले बीमार और बुजुर्ग लोगों को रहने की जगह एवं सहायता प्रदान करता है। स्वागत भाषण और दो कर्मचारियों के साक्ष्य सुनने के बाद संत पापा ने उपस्थित लोगों को संबोधित कर कहा, लूद में आपके साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है। जहां 150 से भी अधिक सालों से दुनिया के कोने कोने से तीर्थयात्री माता मरियम के माध्यम से यीशु को अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तकलीफें चढ़ाने आते हैं। सचमुच यहाँ दुर्बलता छिपी नहीं है, बल्कि एक पौत्र मुलाकात की जगह बन जाती है। इस साल तीर्थ यात्रा की प्रेरितिक विषय वस्तु है, प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। संत पापा ने कहा, यह प्रभु के दूत और मरियम की नजरों के बीच के अनोखे आदान प्रदान को दिखाता है। इस मुलाकात में एक युवा महिला की विनम्रता और उदारता ने ईश्वर को अपने मुक्ति कार्य को पूरा करने दिया। मरियम ने प्रभु को अपने लिए नहीं रखा, बल्कि उन्हें दुनिया को दिया और हम में से हर एक से कहा, प्रभु तुम्हारे साथ है। संत पापा ने कहा, यह सच्चाई मानव के रूप में हमारी गरिमा की नींव है और यहाँ मरियम हम में से हर एक को एक खास व्यक्ति के रूप में देखती है। जैसा कि संत बेरनादेत ने गुफा में दिव्य दर्शन के दौरान गवाही दी थी, यह ममतामय नज़र हमें फिर से याद दिलाती है कि ईश्वर की नज़र में कोई भी अदृश्य नहीं है। पोप ने इसके विपरीत भावना पर खेद प्रकट करते हुए कहा, ऐसे समय में जब समाज के कुछ हिस्से मानव जीवन की गरिमा को नज़रअंदाज करने या आंखें मूंदने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सबसे पहले अपने अंदर और दूसरों में एक सोचने समझने वाला नज़रिया बढ़ाना होगा। यह उन लोगों का नज़रिया है जो जीवन के उसके गहरे अर्थ में देखते हैं, जो उसके मुक्त होने, उसकी खूबसूरती और स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारी के उसके बुलावे को समझते हैं। यह उन लोगों का नज़रिया है जो असलियत पर कब्जा करने का दावा नहीं करते, बल्कि उसे एक उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं। हर चीज़ में सृष्टिकर्ता का प्रतिबिंब देखते और हर इंसान में उसकी जीती जागती तस्वीर देखते हैं। यह नज़रिया हर इंसान के चेहरे पर मिलने, बातचीत एवं एकता के बुलावे को देखने के लिए खुला है, ताकि दुनिया में जीवन हो सके। देवदूत संदेश के दौरान जब प्रभु ने उन पर दृष्टि डाली, तब मरियम ने महसूस किया कि वे प्रभु द्वारा चुन ली गई हैं। इस मुलाकात में हम में से हर एक जन यह जानता है कि हमें भी ईश्वर के प्यार के लिए बुलाया गया है और ईश्वर के प्रेम के लिए गहराई से निर्दिष्ट किया गया है, जो जीवन के स्रोत हैं। मानव सिर्फ इसलिए योग्य है क्योंकि वह अनंत जीवन के लिए बना और निर्दिष्ट है। हमारी गरिमा को मापी या उस पर बहस नहीं की जा सकती। तब संत पापा ने रोगी भाई बहनों को संबोधित कर कहा, मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोगों के लिए खास बीमारियों और कभी कभी बहुत अधिक दर्द के कारण आपका भविष्य अंधकारमय, अनिश्चित एवं बिना उम्मीद के लग सकता है, लेकिन कोई भी मानवीय कानून आपको अपनी गरिमा की निश्चितता कभी खोने नहीं दे सकता। इसके विपरीत मानव की इसी कभी न खोने वाली गरिमा के नाम पर हमें झूठे दया की आड़ में मौत का लालच ठुकराना चाहिए। मौत का कारण बनना कोई साधारण बात नहीं है। पोप ने इच्छा मृत्यु के कानून का विरोध करते हुए कहा, जो कानूनी है जरूरी नहीं है कि वह नैतिक भी हो। इसके बाद संत पापा ने दुनिया भर के स्वास्थ्य कर्मियों से अपील करते हुए कहा, यहाँ लूद में रोगियों और उम्मीद के शहर में मैं स्वास्थ्य देखभाल के पूरे समुदाय से अपील करता हूँ कि आप अपने काम के गहरे अर्थ को याद रखें, जो कि एक पीड़ित इंसान की देखभाल करना है, ना कि उसे खत्म करना। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जीवन के उत्साही सेवक बने। मैं आप सभी को प्रभु की माता के ममतामय स्नेह को सपोर्ट करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त से हमारे लिए सांत्वना प्राप्त करें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। और इसके बाद आज पोप का अंतिम कार्यक्रम होगा, शाम को लूद की माता मरियम के ग्रोटो में रोजरी माला विनती। कल उनके कार्यक्रम मेट्स में होंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।